0: अलाउद्दीन खिलजी का,
1: हाँ
0: अलाउद्दीन खिलजी का दौर है। तो बहुत सारी अफवाहें इस बात से गर्दिश कर रही हैं कि हजरत अमीर खुसरो शायद अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी शायर थे। हाँ
1: ओ सो देयर वाज दिस द एम्परर इन
0: बस
1: दिल्ली नेम्ड अलाउद्दीन खिलजी एंड दिस इज ड्यूरिंग दैट टाइम एंड सम ऑफ द स्टोरीज और द थ्योरीज प्रपोज बाय पीपल इज दैट अमीर खुसरो ऑल्सो बिकम्स अ कोर्ट म्यूजिशियन और कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। हाँ बोलिए मुस्तफा जी।
0: तो ये अफवाह थी और अभी कुछ इस पे कुछ बातें भी चल रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था।
1: एंड ही
0: हजरत
1: सेइंग
0: अमीर
1: दैट इज नॉट ट्रू।
0: या हजरत अमीर खुसरो अपने टीचर, अपने गुरु के आस्थाने पे, अपनी उनकी खानकाह पे हमेशा रहते थे और किसी दरबार में जाने के वो मतलब के उसमें जाने के वो हामी नहीं थे।
1: Oh my goodness! So he's making a very strong point, saying this is completely untrue. He was not aligned with the emperor and not part of the court. He was very much a part of the Nizamuddin Aulia ecosystem. हाँ बोलिए सर।
0: एक वक्त आया कि जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक बहुत बड़े साउथ इंडिया के पंडित और गायक तशरीफ लाए।
1: सो ग्रेट साउथ इंडियन सिंगर केम टू द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। हाँ बोलिए उसके बाद।
0: वो आए और उन्होंने आकर संस्कृत में एक बहुत बड़ा सवाल किया जो कि 28,000 जुमलों पे मुश्तमिल था। उन उन जुमलों पे बना हुआ था, उन
1: ये
0: वर्डिंग पे
1: क्या
0: बना
1: है?
0: हुआ।
1: जुमलों के मतलब मुझे।
0: वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स
1: सो दिस ग्रेट संस्कृत स्कॉलर
0: ट्वेंटी एट थाउजेंड वर्ड्स
1: कम्स टू द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड आस्क अ क्वेश्चन। क्या प्रश्न पूछा है? ये 28,000 वर्ड्स का।
0: सवाल। जी जी प्रश्न।
1: सो ही आस्क अ क्वेश्चन विद अ पैसेज व्हिच हैज 28,000 वर्ड्स। हाँ उसके बाद।
0: तो उस दौर में, क्योंकि जैसा मैंने अर्ज किया कि हजरत अमीर खुसरो तमाम जबानों के जानने वाले थे और उसमें संस्कृत भी शामिल थी, संस्कृत को भी जानते थे। जी
1: बस मुस्तफा जी से, लेकिन एक प्रश्न पूछू मुस्तफा जी।
0: जी जी
1: आप जो बोल रहे थे कि अमीर खुसरो जी अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में नहीं थे, या नहीं थे?
0: नहीं थे,
1: ओके सो ओके ही इज
0: नहीं
1: गोइंग
0: थे
1: टू कंटिन्यू द स्टोरी।
0: जी।
1: सो संस्कृत स्कॉलर कम्स फ्रॉम साउथ इंडिया एंड देन आस्क दिस क्वेश्चन व्हिच इज इन अ पैसेज ऑफ 28,000 वर्ड्स एंड देन व्हाट हैपेंस मुस्तफा जी?
0: वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे, उनके उनके दरबार में नहीं थे। तो बादशाह ने, क्योंकि संस्कृत एक पुरानी जबान थी, उस दौर के हिसाब से भी बहुत पुरानी जबान थी, और मौजूदा हिंदू जो वहां के मौजूद थे उनको भी संस्कृत समझने में बहुत मुश्किल थी।
1: हाँ बहुत मुश्किल। सो द अदर थिंग मुस्तफा जी इज सेइंग इज इट इज स्ट्रांगली लाइकली दैट अमीर खुसरो जी हैड आल्सो लर्न संस्कृत एंड देन ही कम्स बैक टू द स्टोरी दैट दिस संस्कृत स्कॉलर फ्रॉम साउथ इंडिया हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड द हिंदूज देमसेल्व्स आर मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ट्यूटर्ड इन द फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ संस्कृत सो इट वॉज हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड इट। हाँ बैक टू यू मुस्तफा जी।
0: तो बादशाह ने एक फरमान जारी किया कि जाओ और पता करो कि ये पंडित जो आए हैं कि क्या सवाल कर रहे हैं और कौन ऐसा शख्स है जो इस सवाल का जवाब दे सके।
1: ओके सो देन द बादशाह टेक्स आउट अ फरमान व्हिच इज लाइक एन ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर द एम्परर्स कोर्ट ऑर्डर सेइंग दैट हे समबडी हैज टू फिगर आउट व्हाट इज दिस क्वेश्चन दिस जेंटलमैन दिस पंडित फ्रॉम साउथ इंडिया इज आस्किंग व्हिच हैज 20,000 वर्ड्स एंड सेंड्स आउट एन ऑर्डर एंड आई गेस प्रोपगेट्स दैट थ्रू द सिटी एंड हिज किंगडम। उसके बाद उस्तावा जी।
0: उसके बाद फरमान की ताबीर हुई, फरमान को एक्सेप्ट किया गया और उसके लिए तलाश के लिए लोग निकले। तो हजरत अमीर खुसरो उस दौर में बहुत पॉपुलर आदमी थे, बहुत पॉपुलर शख्स थे, बहुत पॉपुलर इंसान थे। तो उनको तलाश करने में इतनी कोई मुश्किल नहीं हुई। पता चल गया कि वो अपने पीर के दरबार में, अपने पीर के खानकाह में मौजूद होते हैं और ये शख्स है जो पंडित गोपाल नाइक के सवालों का जवाब दे सकता है।
1: So then they tracked down, by then Amir Khusru ji was quite famous and they tracked him down at